0: शुध्यन्ता ज्योतिरहं विरजामि पाप्मा भूया सग्गस्वाहा
1: स्वाहा
0: देभ्यो देवेभ्य स्वाहा
1: भूवाय भूमाय स्वाहा
0: सुदक्षितये स्वाहा
1: सुदक्षित

0: अहम् अजन्मा अजेयः अहम् कारणम् बन्धमोक्षयो।
1: आई एम द माइंड, एम आई रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डाउनफॉल? नो, इट इज नॉट मी, इट इज यू, योर सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। इट इज यू हु हैज टू कंट्रोल मी। आई एम लाइक ए हॉर्स एंड माई रेन्स आर इन योर हैंड्स। I cannot be blamed for this.
2: Yes, you are right. I am repenting. Lack of control of my senses took me along the path of bondage. But now, I have resolved to achieve the highest goal of man. I realize when once the mind settles on the lotus feet of that embodiment of beauty and goodness, it can never more crave for anything except the nectar of the lotus feet.